0: You are tuned to the voices of the subcontinent.
1: रेडियो हार्मनी के श्रोताओं को अरविंद गुप्ता का प्रणाम। आपका हार्दिक स्वागत है रेडियो हार्मनी हर बुधवार शाम 7 से 8 बजे तक पीपल पावर्ड रेडियो 2XX FM 98.3 पर आपके लिए आता है। रेडियो हार्मनी आपको समसामयिक मुद्दों, महत्वपूर्ण घटनाओं, समाचारों, विचारों और समुदाय से जुड़े मुद्दों की कवरेज लाता है। जानकारी और मनोरंजन से भरपूर एक घंटे के लिए बने रहें। एंड फ्रेंड्स, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड ज्वाइन द ब्रॉडकास्ट टीम एट रेडियो हार्मनी। सपोर्ट अस इन ब्रिंगिंग यू योर फेवरेट प्रोग्राम्स, एस्पेशली द यूथ। यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन harmonyfm2xx@gmail.com। आज हम भारतीय सिनेमा के दो मशहूर गायकों मुकेश और सोनू निगम के बारे में बात करेंगे। हम आज अपने शो की शुरुआत मुकेश के गाए एक पुराने लेकिन मशहूर राम भजन से कर रहे हैं।

जिनके हृदय श्री राम बसे, गाया था मुकेश ने। ये 1976 में इसको संगीतबद्ध किया मुरली मनोहर स्वरूप ने और इसके बोल लिखे थे दीपक ने। मित्र, जुलाई के महीने में अब कुछ ही त्यौहार और तिथियां रह गई हैं। 25 जुलाई को गौरी व्रत शुरू हो रहा है और 25 को ही देवशयानी एकादशी है। 29 की गुरु पूर्णिमा और 29 को ही व्यास पूजा है। 30 तारीख को श्रावण शुरू होता है नॉर्थ में। 25 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स ऑफ अफ्रीकन डिसेंट है और वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे एंड इंटरनेशनल डे फॉर जुडिशियल वेलबींग है। 28 को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है, और 30 को इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप एज वेल एज वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस। तो आइए मित्रों, आज का हमारा पहला खास सिंगर हैं मुकेश। इनका पूरा नाम था मुकेश चंद माथुर और इनका जन्म हुआ 22 जुलाई 1923 को। देहांत हो गया था 27 अगस्त 1976। इन्हें मुकेश के नाम से बेहतर जाना जाता है। एक भारतीय प्लेबैक सिंगर थे। उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर और प्रशंसित प्लेबैक सिंगर में से एक माना जाता है। उन्हें मिले कई नॉमिनेशंस और अवार्ड्स में से फिल्म रजनीगंधा, जो 1973 की फिल्म थी, के उनके गाने कई बार यूं भी देखा है, ने उन्हें बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल फिल्म अवार्ड दिलवाया। मुकेश एक्टर राज कपूर, मनोज कुमार, फिरोज खान, सुनील दत्त और दिलीप कुमार की आवाज़ के तौर पर भी पॉपुलर थे।

दिल जलता है। गाने वाले थे मुकेश और मूवी थी पहली नज़र जो 1947 में आई थी। संगीत दिया था अनिल विश्वास ने और बोल लिखे थे डॉक्टर सफदर आह सीतापुरी ने। मुकेश सिंगर के एल सहगल के इतने फैन थे कि प्लेबैक सिंगिंग के शुरुआती सालों में वे अपने आइडल की नकल करते थे। वास्तव में ऐसा कहा जाता है कि जब केएल सहगल ने पहली बार ये गाना दिल जलता है सुना तो उन्होंने टिप्पणी की कि यह अजीब है, मुझे यह गीत गाने की याद ही नहीं है। मुकेश ने संगीत निर्देशक नौशाद अली की मदद से अपनी गायन शैली बनाई, जिन्होंने मुकेश को सहगल शैली से बाहर आने और अपनी शैली बनाने में मदद की। नौशाद ने उन्हें अंदाज फिल्म के लिए गाने दिए। शुरुआत में मुकेश इस फिल्म में दिलीप कुमार की घोस्ट आवाज थे और मोहम्मद रफ़ी ने राज कपूर के लिए गाया था। उन्होंने नौशाद के लिए कई हिट फिल्में दी जैसे अनोखी अदा, मेला, अंदाज। अन्य संगीतकार जिन्होंने महान दिलीप कुमार के लिए जीवन सपना टूट गया जैसे हिट गीतों में मुकेश की आवाज़ का उपयोग किया, लेकिन बाद में दिलीप कुमार ने रफ़ी को अपनी घोस्ट वॉइस चुना और मुकेश राज कपूर की घोस्ट वॉइस बन गए। मुकेश ने शंकर जयकिशन के लिए सबसे ज़्यादा यानी 133 गाने रिकॉर्ड किए। उसके बाद कल्याण जी आनंद जी या उनके लिए 99 गाने रिकॉर्ड किए। 4 फिल्मफेयर अवार्ड्स में से मुकेश ने शंकर जयकिशन के गानों के लिए 3 अवार्ड्स जीते।

कई बार यूं भी देखा है। फिल्म थी रजनीगंधा, गाया था मुकेश ने, संगीत दिया था सलील चौधरी ने, बोल लिखे थे योगेश ने। और श्रोताओं, आपको याद होगा इस फिल्म में काम करने वाली थी विद्या सिन्हा और उनके स्टार को स्टार थे अमोल पालेकर, दिनेश ठाकुर, रंजीता ठाकुर, मास्टर चीकू, और फिल्म को डायरेक्ट किया था बासु चैटर्जी ने। बड़ी खूबसूरत फिल्म थी, बहुत सीधी सादी घरेलू फिल्म थी। मुकेश की आवाज़ पर सबसे पहले उनके दूर के रिश्तेदार मोतीलाल की नज़र पड़ी जब उन्होंने अपनी बहन की शादी में गाया था। मोतीलाल उन्हें बंबई यानी आज की मुंबई ले गए और पंडित जगन्नाथ प्रसाद से गाने की ट्रेनिंग दिलवाई। इस दौरान मुकेश को हिंदी फिल्म निर्दोष, जो 1941 में बनी, उसमें एक्टर सिंगर का रोल मिला। उनका पहला गाना दिल ही बुझा हुआ हो तो ये था, जो एक एक्टर सिंगर के तौर पर निर्दोष के लिए था, जिसे नीलकंठ तिवारी ने लिखा था, और प्लेबैक सिंगर के तौर पर उनका पहला हिट गाना दिल जलता है तो जलने दे ये था, जो 1945 में एक्टर मोतीलाल के लिए फिल्म पहली नज़र में था, जिसमें अनिल बिस्वास का म्यूज़िक था और आह सीतापुरी के बोल थे। और ये मैंने गाना आपको पहले ही सुनवा दिया।

0: जीवन सपना टूट गया, मुकेश का गाया हुआ फिल्म अनोखा प्यार से। ये फिल्म 1948 में आई थी और इसका संगीत दिया था अनिल बिस्वास ने। दोस्तों 1974 में मुकेश को रजनीगंधा के गाने कई बार यूं भी देखा है, जिसे मैंने अभी आपको सुनवाया था, उसके लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। और फिल्म अनाड़ी जो 1959 के में आई थी, उसके गाने सब कुछ सीखा हमने, पहचान के गाने सबसे बड़ा नादान वही है, बेईमान फिल्म का गाना जय बोलो बेईमान की, ये तीनों गाने शंकर जयकिशन ने कंपोज किए थे। और फिल्म कभी कभी जो 1976 के टाइटल सॉन्ग कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। उन्होंने कुल मिलाकर लगभग 1300 गाने गाए। यह संख्या उनके कुछ समकालीनों द्वारा गाए गए गीतों से कम है, लेकिन सच तो यह है कि मुकेश ने मात्रा के बजाय गुणवत्ता पर जोर दिया। 1970 के दशक में उनके द्वारा गाए गए तुलनात्मक रूप से कम गीतों का कारण उनकी बिगड़ती हृदय समस्या के कारण उनकी बिगड़ती सेहत को माना जा सकता है।
1: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

0: कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। ये था फिल्म पूरब और पश्चिम का एक गीत। ये फिल्म 1971 में आई थी। गायक थे मुकेश और गीतकार थे इंदीवर। संगीत निर्देशक कल्याण जी आनंद जी। मुकेश द्वारा गाए गए अनगिनत गीतों में से फिल्म आनंद, जो 1971 की, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और शोर से 1972 की फिल्म थी, का एक प्यार का नगमा है। फिल्म आनंद का ही मैंने तेरे लिए ही सात रंग के और अनाड़ी फिल्म जो 1959 की थी, सब कुछ सीखा हमने, मेरा नाम जोकर का 1970 की फिल्म जीना यहाँ मरना यहाँ, और कहता है जोकर उनके प्रशंसकों और अनुयायियों के बीच सबसे लोकप्रिय थे।
1: मैंने

ये था फिल्म आनंद का एक गीत, 1971 की फिल्म थी, गाने वाले थे मुकेश और इसका संगीत दिया था सलील चौधरी ने, बोल लिखे थे गुलजार ने। अपने करियर में मुकेश ने राज कपूर के लिए 110 गाने, मनोज कुमार के लिए 47 गाने और दिलीप कुमार के लिए 20 गाने गाए।

जीना यहाँ मरना यहाँ, फिल्म थी मेरा नाम जोकर, गाया था मुकेश ने और बोल लिखे थे शैली शैलेंद्र ने और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। मित्रों, आप सुन रहे हैं रेडियो हार्मनी, जो हर बुधवार को शाम 7 से 8 बजे तक प्रसारित होता है, पीपल पावर्ड रेडियो 2XXFM 98.3 पर। मैं हूं आपका प्रस्तुतकर्ता अरविंद गुप्ता। तो अभी तक हमने मुकेश को कवर किया, आइए एक और महान संगीत गायक सोनू निगम के बारे में बात करते हैं। इनका जन्मदिन पड़ता है 30 जुलाई को। इनकी पैदाइश हुई 30 जुलाई 1973। ये एक भारतीय पार्श्व गायक, संगीत निर्देशक, डबिंग कलाकार और अभिनेता हैं। उन्हें भारत के सबसे बहुमुखी गायकों में से एक माना जाता है, जिनकी गायन सीमा बहुत विस्तृत है। उनके प्रदर्शनों में कई प्रकार की शैलियां शामिल हैं, जैसे शास्त्रीय संगीत, भक्ति संगीत, गजल, कव्वाली, रॉक और पॉप संगीत इत्यादि। निगम मुख्य रूप से हिंदी और कन्नड़ भाषा की फिल्मों में गाते हैं। उन्होंने अपने पूरे करियर में 32 से अधिक भाषाओं में 6000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए हैं। उन्होंने कई गैर फिल्मी एल्बम जारी किए हैं और कुछ हिंदी फिल्मों में अभिनय भी किया है। निगम को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2 फिल्मफेयर पुरस्कार और 2 फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण और 4 आईफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें सितंबर और अक्टूबर 2013 में 2 बार बिलबोर्ड अनचार्टेड चार्ट पर शीर्ष कलाकार का दर्जा दिया गया। निगम को 2022 में भारत के 4th सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।

सूरज हुआ मध्यम, फिल्म थी कभी खुशी कभी गम, गाने वाले थे सोनू निगम और अलका याग्निक, बोल लिखे थे अनिल पांडे ने, संगीत दिया था संदेश शंडिलिया ने। निगम को उनके संगीत के आदर्श मोहम्मद रफ़ी के नाम पर आधुनिक रफ़ी उपनाम दिया गया है। हिंदी और कन्नड़ के अलावा उन्होंने बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, उड़िया, अंग्रेजी, असमिया, मलयालम, गुजराती, भोजपुरी, नेपाली, तुलु, मैथिली और मणिपुरी में गायन किए हैं। निगम ने हिंदी, कन्नड़, उड़िया, छत्तीसगढ़ी और पंजाबी में पॉप एल्बम्स के साथ साथ हिंदू और इस्लामी भक्ति एल्बम भी जारी किए हैं। उन्होंने कई बौद्ध एल्बम जारी किए हैं। निगम ने उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और मध्य पूर्व और पश्चिमी देशों में प्रदर्शन भी किए हैं। तो आइए एक लेट अस लिसन टू सोनू निगम कोलैबोरेटिंग विद कंपोजर एंड लिरिसिस्ट राजेश ढाबरे टू सिंग ए बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल एंड मेडिटेटिव नंबर।

मित्रों, आज हमने सिंगर मुकेश और सोनू निगम की ज़िंदगी और समय के बारे में बताया। हमें उम्मीद है कि आपको शो पसंद आया होगा। आपके साथ के लिए धन्यवाद। रात के 8 बज रहे हैं और मुझे आपको आपसे अलविदा लेनी होगी। मैं अगले बुधवार को फिर से आपका साथ चाहूँगा, जब रेडियो हार्मनी पीपल पावर्ड रेडियो 2XX पर शाम 7 से 8 बजे तक ऑन एयर होगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, और इसके बाद लैटिनो अमेरिकन ऑरा के लिए बने रहें।